0: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th ऑगस्ट। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू've tried Dawat Extra Long Basmati. Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
1: You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and
2: it could be you.
1: Yeah, what he said. Lotto from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
3: Being good with money on holiday starts with good habits at home. At St-

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहि

0: 2007 की फिल्म चक दे इंडिया, सुखविंदर सिंह की आवाज में ये टाइटल ट्रैक, वन ऑफ शाहरुख खान्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस आई फील। इसे आप सुन रहे सनराइज पर आज थर्सडे द 16th ऑफ जुलाई की सुबह शबनम साही के साथ। मिस्टर खान, थैंक यू सो मच फॉर योर शॉर्ट एंड स्वीट शेयर। ख्वाहिश का मतलब डिजायर, पुरशिशे हाल का मतलब टू आस्क अबाउट समवन्स कंडीशन। Hold on to those two words, those two phrases and the meanings, okay? अर्ज करते हैं, हाल ये है कि ख्वाहिश पुरशिश हाल भी नहीं। That I do not have the desire to ask about someone's condition, is that what you're saying? हाल ये है कि ख्वाहिश पुरशिश हाल भी नहीं, उसका ख्याल भी नहीं, अपना ख्याल भी नहीं। वाह! 07925-702-72 is the number to WhatsApp me on. Good morning.
1: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
2: I love you, Dr. Noi Nika.
3: Ye tumhara bachpana hai, pyaar nahi. Umr dekhiye tumne apni. Hamare beech kabhi kuch nahi ho sakta.
4: Tab tak logon ki parwah karti rahoge. तक अपने दिल की आवाज से दूर भागते
0: रहो। Watch Set Up, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Before I play you the hit of the hour, Darshan, my friend in India, you promised to stay tuned till the end of the show. So I decided to honor my promise. I've done a quick check on the computer. Anjana Anjani ka gana, behad khoobsurat gana, tujhe bhula diya. We only have the remixed version. How can that be possible? Would you like to hear the remixed version? Let me know. Right now, of course, it's time for this. Chand Mera Dil, Neeti Mohan. इश्क निभावन दे, जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी सक कर रहे हैं, आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। मेनी ऑफ यू रिजोर्टिंग टू ह्यूमर टू डील विथ यस्टरडेज रिजल्ट, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? आई थिंक सो।

0: शान एंड श्रेया घोषाल।
1: ये प्यार है क्या खूबसूरत बला।
0: Taken from Fight Club members only. You know the first rule of Fight Club, right? You don't talk about Fight Club. Shh.
1: बोलो ना तुम जरा, शुड बी ना बोलो तुम जरा। इनका तो मेंबरशिप आज ही कैंसिल कर दिया जाएगा। आई कैन सी इट।
0: 07925-700-272 द नंबर टू व्हाट्सएप मी ऑन। सनराइज रेडियो पर इस घंटे का आपकी पसंद।
2: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
3: बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक।
0: अ ड्रीम वेटिंग टू बी रिवाइव्ड। वॉच डॉक्टर आरंभी मंडे टू फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Afsana Khan and Rebel, taken from the soundtrack of Dhurandhar, of course.

0: Listener's Choice brought to you by Utsav Plus.
1: I love you, Dr. Noemi.
2: ये तुम्हारा बचपन है प्यार नहीं उम्र देखिए तुम देखो हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता
3: तब तक लोगों की परवाह करती रहोगे तक अपने दिल की आवाज से दूर भागते रहोगे
4: Watch Sehrab, a heartfelt musical romance every day at 6 p.m. only on Utsav Plus.
5: Let's get your World Cup update.
0: World Cup match updates with Pepe's Piri Piri. Score big this summer with our back of the net bundle deal. Turn up the heat at Pepe's. Order delivery or collection now from the Pepe's app.
5: So we had the final semi